sama tripurani tanu vidita sakala sansar kaushik suno vanda ehman kutila kala vasa nija kula ghala tum hat kahu jo chahu ubara kahi tatap bal rosho hamara sur samad karani karahi kahi na janab hi aap nityaman ran paye kaya na karahi pralap परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभा हु न कुल ही प्रसंसी काल हु डर ही न रन रघुवंशी विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुम ही डराई सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के उखरे पटल पर